0: লম ছু
1: বুড়া এ বুড়া এসপালি বৈশাখমা হাম্রো ছোরাকো বিয়ে গর্নে ভনেকো হইন ভন্যা
2: হুন ত হো নি বুড়ি তর ইয়ো ঘরকো হালত হের ত ফেরি অব তরকারী ফলফুল র বালি নালি লাউনে বেলা পনি ভয়েকো ছ কা জানি কে গর্নে ম ত কেই সোজনাই সক্যা ছৈন ইয়ো সবই সামান একই ঠাউমা পাইনি পসল কা হোলা কুন্নি
1: কিন চিন্তা লিনুহুন্ছ বুড়া পহিলা জুন তারা রেস্টুরেন্ট সঞ্চালন গর্নুভয়েকো দাই ভাউজুলে হাম্রোই বেশী শহরনগরপালিকা আর্ট তেরামা সিবিএস তথা বিউ ভিজন ভণ্ডার সঞ্চালন গর্নুভয়েকো ছ ত ত্যাহাঁ তপাইলে ভন্নুভয়েকো সবই সামান পাইন্ছ বুড়া
3: हाम्रा सेवाहरू हामी कहाँ सिजन अनुसारका तरकारी फलफूल र घाँसका बिउहरू पाइन्छ र सबै किसिमका मकैका बिउहरू पाइनुका साथै होलसेल मूल्यमा रासायनिक मल पनि पाइन्छ
1: सिबिएस तथा बिउबिजन भण्डार बेसी सहर नगरपालिका आठ सेरा लम्सुङ प्रोप्राइटर सृजना श्रेष्ठ
3: सम्पर्क नम्बर 98462 18202 र 98403 1989
1: सिबिएस तथा बिउबिजन भण्डार बेसी सहर नगरपालिका आठ सेरा लम्सुङ
3: नोट सबै किसिमका धान मकै तथा तरकारीका बिउहरू पाइन्छ
4: बुढी ए बुढी किन न्याउरो मुख लगाएर बसे कि के भयो मेरो बुढीलाई आज
5: चाडबाड पनि नजिकै आइसक्यो घर गहना किनिदिन्छु भनेको पनि कति भइसक्यो खै अहिलेसम्म किनिदिएको होइन
4: नरिसाउ न बुढी घर गहना जस्तो कुरो जहाँ पाए त्यही किनेर पनि त भएन नि
5: चिन्तै नगर्नुहोस् न बुढा बिच सहरको नारायण चोकमा रहेको दिपा सुन्चारी पसलमा सबै प्रकारका आकर्षक र भरपर्दो गर गहना पाइन्छ नि त्यही जाउँ न
6: विगत 50 वर्षदेखि सुन्दर बजार नगरपालिका 9 भोटेवाडामा सेवा दिँदै आएको र अहिले बेसी सहरको नारायण स्थानमा शाखा रहेको दिपा सुन चाँदी पसल तपाईँहरूकै सेवामा समर्पित छ
3: हजुर हामी कहाँ शिरफुल शिरबन्दी चन्द्रमा झुम्का रानीहार माइली तिलारी छड्के तिलारी चुरा नौगेडी माला र अर्डर अनुसारको गहना बनाइनुका साथै रेडिमेड गहनाहरू बिक्री गरिन्छ पुरानो गहना साटफेट गरिनुका साथै राशि अनुसारको पत्थर पनि पाइन्छ प्रोप्राइटर हरि सुवर्णकार सुदीप सुवर्णकार र कमला सुवर्णकार
5: सम्पर्क फोन नम्बर 98165 85 20 98 066 66 162 र 066 521 3081 दिपा सुन्चारी पसल विश्वहर नगरपालिका 8 नारायण स्थान लम्सुङ
7: शान्ति र विकासको लागि हाम्रो आवाज रेडियो चौतारी 91.4 मेगाहर्ज